कुदरत अधूरा कुछ भी रहना ट्रेंड देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे च है और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उसका नाम आनंद कारज विवाह निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया। पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नू लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नू पुरुष आख्या है, भक्ति नू नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष दे अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री दे अंदर। मन दा टिकाओ भावना लौंदा है, मन नू सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री दे अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष दे अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी। स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होण लई तड़पदा है, उथे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है,
अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देंगे, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग देते जिड़े धर्म खड़े सन वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग कर दे ने स्त्री दा और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्त ही खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नो चलाए मान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहे है तो संसार चलेगा, और परिवार चल रहा है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सौरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने, ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सौरे। तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचने दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञानहीणी है, तर्कहीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नो पिंड नो अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चो निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहण वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलन दे च असमर्थ रह गए। अंधा टंटोल टटोल के बुए तक पहुंचे है, और यही हाल पिंगले दासी बुए ते बैठा है। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे है अंधे नो, और आवाज मार के आखे मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है, अंधे दी पिठ ते ये पिंगला बैठ गया, रस्ता दस्ता गया, और रस्ते ते अंधा चलदा गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलन दे सफल होए। हकीकत है संसार दी अगन दुखां दे चों निकलन दे च स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है, और दोवें निकल सकदे ने। अंधे नूं पैर मिल जाणगे और
ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਤਰਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਘਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸੁਭਾਵਕ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਜੋ ਔਗੁਣ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਸ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਮਰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਨਿਨਾਹਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਫੈਲਾਓ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ, ਇਸਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵਨ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ

शायद कुछ इन्हीं ही कमजोरियां करके स्त्री निंद नहीं रही है। और नरक दी द्वारी कहते रहे ने साडे देश ते आदर्श, इते नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देश ते किसी हद तक इस नु शूद्र मनिया गया कि जनेऊ पहनण दा अधिकार नहीं रखती, इनू वेद पाठ करन दा अधिकार भी नहीं दिता। और इसनु ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है, शूद्र है। हैरानगी दी गल है, महाकवि तुलसी भी इसनु पशुआं दी श्रेणी विच खड़ा करदे ने। ढोर गवार शूदर पशु नारी, ए पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नो पशु नो ताड़दे रहिए तां ठीक रहिंदे ने, इस तरह शूदर नो ते पशु नो जिवें ताड़दे आ उसे तरह स्त्री नो ताड़दे रहिए तां ओह ठीक रहिंदी है। पशुआं दी दुनिया विच खड़ा कीता इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश दे प्राचीन ऋषियां ने, मुनियां ने, ए घोर नरक दी दुआरी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी, इते मोक्ष द्वारी है। इस तो बिना मुक्ति किते हैरानगी, मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी, किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्हां ने नरक द्वारी आख्या उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ए सी कि स्त्री नूं असी किधरे भी अवतारी दुनिया विच नहीं देखते। अज तक जितने अवतार आए करीबन करीबन वो पुरुष तन धारण करके आए। जे अपने देश दे प्राचीन सिरमोहर अवतारी पुरुषां नूं देखिए, विष्णु ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, बड़े बड़े भक्त ने, ऋषि ने, मुनि ने, पुरुष रूप देच ने। स्त्रियां देच कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखण नूं नहीं मिली। साहित तरह तरह दी कला दे जन्मदाते भी पुरुष, संगतराश, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, चोटी दे साइंटिस्ट, चोटी दे राजनेता, हर दुनिया विच हर पासे असी पुरुष नूं अग्रसर देखदे आं, अग्गे देखदे आं। तो पुराने लोगां कोल ए तर्क सी कहण वास्ते कि पशु दा मतलब है पछड़िया होया, तो चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है, पशु दा मतलब है पछड़िया होया, पुरुष तो पछड़ी हुई है, पुरुष दे पिछे है। इस वास्ते आद काल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पिछे ही चले, क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष ते पछड़ी हुई है, पिछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंगे है, दौर लंगे है, जिथे स्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान दी तरह, वस्तुआं दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी। जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी, इस दे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना दी गिणती विच ओह भी आउंदा सी इस दे कोल स्त्रियां ज्यादा ने, इहदे कोल 400 स्त्रियां ने, इहदे कोल 600 स्त्रियां ने। दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करने, इस दौर विच भी ऐसे नवाब महाराजे होए ने 400-400 राणियां और 600-600 बेगमां रखण वाले मौजूद, और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसे हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन देच, स्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो ये जुर्म भी नहीं समझिया जांदा सी। जैसे कोई अपने सोने नूं चिकड़ दे सुट देवे,
जैसे कोई अपने घर नू आप ही अग लावे, कोई अपनी धन संपदा नू साड़ देवे, तो अपना धन सी आप फूके है, कोई जुर्म नहीं। स्त्री का धन सी खत्म कर देता है, कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघ गया। और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री के अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गर्स के आदि काल तो स्त्री नू पशु कहण दा, पछड़े होया कहण दा तर्कशील लोगों को जिहड़ा तर्क सी ओए है कि यह कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके, अवतारी दुनिया दे च नहीं दिखा।

0: आपने इस तर्क नो बड़े सोने ढंग नाल जुठलाया है, परे सुटिया है, ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते अवतार नु जन्म देने विच लग गई। वो आप किस तरह ग्रंथकार बन गई, उसका समा उसकी शक्ति ते किसी ग्रंथकार नु जन्म देने विच लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आता, ग्रंथकार नहीं आता, साइंटिस्ट नहीं आता, कलाकार नहीं आता, हर स्त्री कलाकार नो, अवतार नो, संत नो जन्म देण वाली भी नहीं आती। जो किसी संत नो जन्म दे सकी है, वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसी अवतार नो जन्म दे सकी है और अवतार ने किसी ऐसी स्त्री की कुख चुनी है, तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना संत पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना कोई ग्रंथकार चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है उतनी ही उसनु जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है, क्योंकि उसका समा उसकी शक्ति ग्रंथकार नु जो है जन्म देने दे जो है लग गई। बाबा फरीद कहते हैं तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ मां। जिसने किसे ऐसे पुरुष नु जन्म देता है जिसने अपनी जीवन यात्रा नु सफल कीता है, जो फकीर सी, जो संत सी, जो अवतार सी, इसनु जन्म देता है, पूजन योग है ओ मां, धनता दे योग है ओ मां। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह स्त्री नु पुरुष दे बराबर ते खड़ा कर देता, अवतार दी बराबरी ते अवतार दी मां नु खड़ा कीता, ग्रंथकार दी बराबरी ते ग्रंथकार दी मां नु खड़ा कीता, और ऐलानिया के आ सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यहूदियां दे धार्मिक मंदिर स्त्री लई बंद ने, इस्लाम दियां मस्जिदां स्त्री लई बंद ने, वेद पाठ स्त्री नहीं कर सकती, जनेऊ स्त्री जो है नहीं पहन सकती, और जैन धर्म ने ते इत्थे तक कह दिता स्त्री शरीर देच स्त्री दे चोले देच मुक्ति नहीं हो सकती, स्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लेके ही मोक्ष गति नो प्राप्त करना होवेगा। स्त्री साधना करे, जप तप करे, उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा, फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनु मुक्ति मिलेगी, स्त्री चोले ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, स्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है, और इस दी भावना प्रधान अवतारा नु ग्रंथकारा नु भक्ता नु जन्म देती है। ये महान है, ये पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा।
1: उच्चारण करो जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी का जन्म पिंड तुवान जिला टांक उस धरती ते होया है। जदों आपां जयपुर तो कोटे नू जाइए जां कोटे नू राजस्थान विच जयपुर नू जाइए ते रस्ते दे दरमियान एक शहर आउंदा है जिसनू टांक कहा जांदा है। इस टोंक शहर तो थोड़ा जा अंदर नू जा के पिंड तुआन है। ऐद की सबब बनिया सन्मान योग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा

और दास नूं भगत धन्ना जी दे उस अस्थान ते कीर्तन औत कथा करन दा सुभाग मिल गया जिस थां ते भगत धन्ना जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती कीती है। भाई साहब नाथ दे नाल सन, कई बिगे जमीन अज भी भगत धन्ना जी दे नाम ते बोलदी है। भगत धन्ना जी दा ओ खूह है कि जिस खूह दे उपर उन्हां ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती और परिपूर्ण परमात्मा ने उस भगत उस महापुरख दे कारज अराज कीते सन। भाई साहब पिछले साल नाल सांसी कठे सी ते उथे भी विचारां भगत धन्ना जी बारे होईयां। मैं सिर्फ उन्हां दे जीवन संबंधी एक अर्ज करनी चाहना हां कि आम तौर ते भगत जी दा जिक्र भाई गुरदास साहब जी दी उस पौड़ी नूं आधार बना के कीता जांदा है जिस विच ठाकर दी पूजा दा जिक्र कीता गया है। इहदे विच कोई शक नहीं कि जदों इंसान परमार्थ दे मार्ग ते चलदा है ते कई वारी कितना समा उहदा कर्म कांडां दे रूप विच ही बतीत हो जांदा है। इहनूं ध्यान नाल मेरी बेनती नूं सरवण करियो। पर वह कर्म कांड तो उदो मुक्त हो जाता है जदों उहदे अंदर सच्चा ज्ञान ते समर्थ गुरु कोलो उहनूं गुरु दीख्या मिल जाए, शब्द की रोशनी विच जीन लग पवे ते वह बाहर मुखी कर्म कांडा तो सदीव काल लई मुक्त हो जाता है। दास गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत धन्ना जी दे तीन शब्द ने, भावें विद्वाना ने गिनती चार कीती है। और राग आसा विच तीन शब्द मानते ने ते एक राग तनासरी विच उन्हां दा शब्द मन्या जांदा है। पर जदों असी गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़दे हां ते राग आसा दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान, भगत धन्ना जी दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान एक शब्द है जिदा सरलेख है महला पंजवां। उहदे विच हैरानगी दी गल है कि धन गुरु अर्जुन देव जी ने नानक पद की वरतों नहीं की पर उसका सरलेख महला पंजवां है। भगत धन्ना जी का वह पवित्र शब्द जिस विच आरंभता विच भगत जी का वचन है, भरमत फिरत बो जन्म बिलाने तन मन धन ही धीरे। मैं सिर्फ बाणी ते फोकस केंद्रित होके कुछ बेनतियां करनियां क्योंकि भगत धन्ना जी का अंदर आपा वह गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी विच है। जिहड़ा शब्द है ये गुरु का आपा है, ये निज स्वरूप है गुरु का। भगत धन्ना जी दे तीन शब्दों विचों एक शब्द गुरु अर्जुन देव जी का, जिस शब्द विच गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने उन्हां भगतां महापुरखां दा जिक्र कीता है जिन्हां नूं उस वक्त दे स्वर्ण जाति वाले उच्ची जात वाले नीवा कहिंदे सन। केवल नीवा ही नहीं कि जे ओ परमात्मा दी भगती समर्पितता दा जिक्र करदे सन ते उन्हां भगतां महापुरखां नूं उच्ची जात वाले जलील भी करदे सन। देखो थोड़ा जा बाणी दी रोशनी च इह दास ने पिछले सालां विच वी एक बार अर्ज कीती सी, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भगत धन्ना जी परमात्मा दी भगती किवें कर लगे उन्हां दा पवित्र शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच कि भगत धन्ना जी नूं करनी कमाणी वाले महापुरखां दे जीवन बारे पता लगा। सब तो पहला भगत नामदेव जी उन्हां दे पवित्र जीवन संबंधी यह समाचार मिलिया कि उच्ची जात वेले उन्हूं अद्धी कौडी दा छिंबा कहिंदे ने। गल ध्यान नाल सुनियो, कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर निकल के नहीं। अद्धी कौडी दा छिपा कहिंदे ने
ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਛਿੰਬੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਮੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੁਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੋਕ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਛੀਮਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੁਲਾਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਚਮਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਣ ਜੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਟਰੋ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਇਹਤੇ ਸ਼ਬਦ ਛੀਪਰੋ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਿੰਬਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਬੁਨਣਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਰਦਾ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਆਪ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ
सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहब का शब्द साडे जीवन की अगवाई करे, सानू उस खजाने की जानकारी मिलेगी। हुण अज तक साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिन भी इत्थे समागम सी कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे, अगवाई करे, सानू उस खजाने की जानकारी मिलेगी। हुण अज तक साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिन भी इत्थे समागम सी कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे। अज तक मैं बाबा कालू जी की याद विच कदी किसे प्रोग्राम नू अटेंड नहीं किया। हो सकता कीर्तनीय गुरसिख बैठे ने, शायद इन्होंने भी ना किया होवे। बाबा कालू जी की यादगार किते ज्यादा नहीं मिलती, उन्हां दी याद विच किते गुरमत समागम नहीं देखे। कारण इको, क्योंकि साडे दिमाग विच इको गल पा दित्ती गई, वह झिड़कते रहे, वह मारते रहे, उन्हां नू समझ ना पई। पर एक मैं बेनती करांगा, वह पिता ने, पिता अपने पुत्र दे जीवन नू चाहुंदा है अपनी बिरती नाल कि बहुत तरक्की करे, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी च देखियो, जिथे धरती नू धन किया गया, मां नू धन किया गया, कुल नू धन किया गया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु दे पिता नू भी नमस्कार कीती गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इक वचन आउंदा है कि धन धन पिता। हुण की आपां बाबा कालू साहिब जी नू धन धन नहीं कहांगे? धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। ये चार शब्द ने कि पिता तन, कुल तन, मां तन, ते चौथा शब्द फिर क्या गया गुरु नू तन। हुण ए जिहड़ा शब्द आपां पढ़ने आ कि गुरु ग्रंथ साहिब विच तां बाणी परमानंद दी दर्ज है, पर धन्ना जी नू ए परमानंद बारे क्यों ना गुरु अर्जुन देव ने विच अंकित कीता? बाणी भगत रामानंद जी दी भी दर्ज है, पर चारा भगतां नू विशेष करके हजूर ने अपने शब्द विच उदाहरण वजो लिया, परमानंद, रामानंद, भगत पीपा जी, भगत बेणी जी, भगत तरलोचन जी, बाबा फरीद साहब जी, उन्हां दे भी अमृत बचन दर्ज ने। पर चार भगत क्यों चुने गए? नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत सैन जी। दरअसल मेरा मन एक गल कहिंदा है कि धन गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द दर्ज करन दा इको कारण सी कि एक जिमीदारा करन वाला उन्हूं एक गल दसी गई कि जिन्हां नूं पिंडां दे लोक नीच कहिंदे ने, देख उन्हां उपर परमात्मा दी इन्नी कृपा होई, वह भगती कर करके परमात्मा विच अपेद हो गए, ते कहिंदे ने इन्हां दे जीवन नूं सुन के एक हल वाण वाले ने प्रतक परमात्मा दे दीदार पा लै। रामानंद, परमानंद, इहदा मतलब यह नहीं कि उन्हां दा जीवन जां उन्हां दी रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हां संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने, पर इन्हां भगतां ने एक क्रांति लियांदी कि जिन्हां नूं लोग कहिंदे सन नीवी जात दे, उन्होंने सच एवे कि समाज दियां नफरत दियां ठोकरां खांदिया होया भी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहब दा एक सलोक है, वह कहिंदे सच एवे कि लोग मेरी जात ना नाम लैके मजाक उड़ांदे, मैं शहर विच लंघना, पिंड विच लंघना, ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लैके पुकार देने, ते देखो महापुरखां ने वचन दर्ज कीते, पर कहिंदे ने परमात्मा मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ए ठोकरा ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती दा एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोल ने कबीर, मेरी जात को सबको हसने खार, हर कोई मेरी जात हसदा है, मजाक करदा है। कबीर, मेरी जात को सबको हसने खार, बलकारी इस जात को जे जपियो सिर जिंगार। कहिंदे मैं कुर्बान का ए दे तो कि जिस जात विच रह के मैनू परमात्मा दी भगती मिल गई। सिर्फ मेरी बेनती सी कि चार भगतां दा जीवन सुन के वह महापुरुख भगती कर लगा। असी शब्द पढ़ लैने आ क्योंकि मैं लड़ी जोड़ना चाहना। पहला शब्द कह के भरमत फिरत बो जन्म बिलाने, तन मन धानी धीरे
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰ

मंगना किधर तो गए। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देवता लेवू मंगे, दो सिर मांगू चूना, दो सिर चूना दा अर्थ आटा, पाओ पाओ दर्थ पाइया पाइया के हो, दो सिर मांगू चूना पाओ की हो संग लूमना, अध सिर मांगू दाले अद्धा सिर दाल, मोको दोनों वक्त जीवाले, खाट मांगू चौ पाई चार पावे आली, सिरहाना अवर तलाई। हुण मेरे वर्गार ते ही करके कहोगे भी दाल चंगी छक ली घ्यो छक के हुण सौणगे, वह कहिंदा नहीं सौण वास्ते नहीं मंजी वंगदा पिया, आ घर दे कलेश पांदे इहनां नूं समझ कोई नहीं पैंदी, मैं भगती करना, मैं तां पासा वट के खेस लैके पाँगा ते करांगा लम्मा पै के भी तेरी भगती। इस तुक नूं समझी, दाल दा जिक्र कीता, अब सिर मांगू दाले मोको दोनों वक्त जवाले, खाट मांगू चौपाई सरहाना उपर, सरहाना अवरत लाई उपर को मांगू खिंदा। हुण जिहड़ा मंजा बिस्तरा लायो ते सौंदे ही है ना, उन्हें यह थोड़ा क्या भी उपर लै खेर दे दी हुण मैं सौवांगा, कहणगे उपर को मांगू खिंदा तेरी भगत करै जन, खिंदा तेरी भगती करांगा भिज के। नाल क्या मैं ना ही कीता लभो एक नाउ तेरा, मैं फबो मैं लालच नहीं कीता। भगत जी कहिंदे ने गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का सवारता, दाल सीधा मांगू घीओ हमरा खुशी करै नित जियो, पनिया शादन निका अनाज मांगू सत सीका। पनिया दा अर्थ जोड़ा, शादन दा अर्थ कपड़ा, ते निका दा अर्थ चंगा सोहना। हुण आपां जे चंगा कपड़ा भी कोई पा लैंदा ना, आपां भी उन्हू भी रूहानियत नाल जोड़ के वेने भी इन्हें एडे सोहने कपड़े पाए किहड़ा भगत होना है, क्योंकि हिंदुस्तान विच गल पा दित्ती कि जिहड़ा सिर च सवाद पाउंदा उह ब्रह्म ज्ञानी है। ओ नहीं गुरु के सिखो चेते रखियो, कई बार पाटे कपड़े पा के भी बंदे नूं रब भुल जांदा, पाटे कपड़िया की खौमे विच ही तुरिया फिरदा। कबीर साहब ने तो गल कही, कहन लगे नगन फिरत जो पाई है जोग, बनका मिर्ग मुगत सब हो गए। जे नंगिया रह के रब मिलता हुंदा सारे मिर्ग ब्रह्म ज्ञानी ना बन जाते। हुण कई ये भी पैरां जुत्ती नहीं पानी, ना समझो भी मैं निंदिया कर रहा, ते गुरु कलगी तर जी का एक बचने कह लगे बांदर नू केड़ा हर समाई बाद कोई जुत्ती पवांदा, उते जवांदरू ही पैरा तुरिया नंगे पैरी, बांदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है। देखो ना क्या महाराज कृपा करो, एक दा कपड़ा चंगा दिया जे, दूजी पैर च पाण वास्ते जुत्ती भी चंगी दियो, पनिया छादन नीका अनाज मांगू सत सीका। जेड़े खेत नूं सत वारी वाह के दाना बीजिया उस खेस दा दई मैनू अनाज, गौ भैंस मांगू लवेरी, भजी हुई गां मज नहीं। ते तुहानू पता जो कुछ हाल जिमीदार करदे ने, जिहड़ी गां मज भज जांदी इहनू दी खुरली नाल ही चेंज कर दिंदे, कहिंदे पिछले पासे बन्नो उन्होंने ने किहड़ा दुध देना है। कहिंदे ने गां ते मज लवेरी दई, हुण कपड़े भी चंगे। मैं बेनती करां वी भाई साहिब उत्ते सन ओह खूह ते बैठा भगत, देखो रब नूं कहिंदा वी अपनी गल को नहीं बननी पिंड जाके, अपनी तां तां गल बनूगी जे अरबी घोड़ी उत्ते तेरा भगत इक वारी पिंड दी गेड़ी देवे तां। ओह कहिंदे ने कृपा करिओ दो गां ते मज लवेरी देनी है दुध देण वाली, ते जिहड़ी घोड़ी होवे चंगी अरबी होवे, गौ भैंस मांगू लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। ते मेरा ख्याल जदों शब्द उच्चारण किया भगत जी का विआह नहीं सी होया, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। कहिंदे जीवन साथी वी ओह दई जिहड़ा भगती करन वाला नाल होवे, घर सतसंग बन जाए, यह ना होवे मैं भगती करदा रहां ते ओह गालां कढ़ी जाए। क्योंकि कबीर साहब की फैमिली च होया कि सुनो दरानी सुनो जिठानी, अचरज एक भयो सात सूत इन मुंडिये खोयो, ए मुंडिया क्यों ना मोयो। कहिंदे जीवन साथी ओह दई जिहदे कोल बैठ के परमात्मा दी याद आवे, तुसी उस भगत नूं याद पै कर दिओ जिन्ने खल बांधिया रब नूं पुकारिया। चेते रखियो खेत बीज दा बीज दा अपने तन नूं खेत बना के बीज गया, सच तां पर जाणीए जा जुगत जाने जियो, तरत काया साध के विच दे करता भी हो।

ही पुरुष है, नेक सुभाव का मालक है, पर उपकारी है। चौधरी हेम राज दे शरीर दा माप लेके मुकम सिंह दे पिता भाई तीरथ चंद ने गुरु गोविंद सिंह पातशाह दे चरणा दा ध्यान तरके चोला बनाउणा आरंभ कीता है। चोला तैयार होया है। चौधरी हेमराज, भाई मुकम सिंह दे पिता भाई मुकम सिंह, ये तिन्ने जिन्हां दा पुराना नाम मुकम चंद है, मैं लफज वरत रहा सिंह बाद विच बन गए सन, तिन्ने जने चलदे चलदे द्वारका नगरी बड़ौदा कोलों आनंदपुर पहुंच जांदे ने गुरु गोविंद सिंह पातशाह दे कोल। उदों मुकम चंद दी उम्र कोई बहुत वड्डी नहीं है। पातशाह दे दीदार कीते, चोले वाली सारी कहानी कह सुनाई। हेमराज कहन लगा, पातशाह इन्हां ने मेरे शरीर विचों तुहानू वेख्या, मेरा माप लेके चोला तुहाडा तैयार कीता है, ते सबब भी यही बने ने, यही मैनू तुहाडे चरणा विच लेके आए ने। हेमराज ने अमृत छकिया है, नाम बन गया है हेम सिंह। तीरथ चंद पिता ने अमृत छकिया है, नाम बन गया है तीरथ सिंह। ते भाई मोकम सिंह ने अमृत पान कीता है, नाम बन गया है मोकम सिंह। यह कथा ते बाद ही है, पर मैं इशारतन बेनती कर रहा, इन्हां ने बाद विच तिन्हां ने अमृत छकिया है और इन्हां दे नाम ही बदल जांदे ने। ये भाई मोकम सिंह गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी दीआं फौजां दे मुखिए ने और ए चमकौर दी कड़ी दे अंदर शहादत दा जाम पींदे ने। इस तों अगे नंबर आउंदा है भाई हिम्मत सिंह प्यारा, ए वी पंजां प्यारिआं विचों दो प्यारे ते गुरु गोविंद सिंह नाल निकल जांदे ने। इक भाई दया सिंह जी पंजां प्यारिआं दे मुखिए और सब तों पहला सीस पेट करन वाले, ते नंबर दो दे उत्ते भाई धर्म सिंह, दोवें निकल जांदे ने पातशाह दे नाल चमकौर दी गड़ी विचों, पर तिन प्यारे शहादत दा जाम पींदे ने। नंबर तीन दे उत्ते वारी आउंदी है भाई हिम्मत सिंह दी। इशारतन बेनती करा, इन्हां दे पिता दा नां गुलजारी चंद है, ए चीवर जात दे नाल संबंध रखदे ने। 1661 विच इन्हां दा जन्म हुंदा है ते जगननाथपुरी दे अंदर इन्हां दा जन्म हुंदा है। जगननाथपुरी समुंदर दे किनारे दुराडे ओह पुरी है, उड़ीसा स्टेट दे अंदर कटक जिले दे अंदर ए जगह पैंदी है, जिथे सन 1509 नूं धन गुरु गोविंद गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी भी पधारे सन 1509 नूं। और आ जिहड़ा शब्द पढ़दे हो ना, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती, ए शब्द गुरु नानक देव पातशाह ने उथे उचारिया सी। उन्हां दी आरती नूं सामने रख के खंडन करदे होए पार ब्रह्म परमेश्वर दी आरती किवें करी दी, ए शब्द साडी झोली विच पाया। ए गल वखरी है कि आरतियां असीं अज वी उस तरह ही कर रहे हां जिवें ओह हिंदू उदों करदे सन, जिस काम करन तों पातशाह ने वरजिया सी, काम अज वी ओही कर रहे हां। अज वी उस तरह ही फुल्लां दी वरखा है आरती कर रहे हां, जदके पातशाह ने वरजिया सी नहीं। खैर, उड़ीसा दे अंदर 1661 दे अंदर इन्हां दा जन्म हुंदा है। उड़ीसा दे अंदर अज एक मंदिर है और बहुत वड्डा है, जिथे पातशाह ने आरती उचारी सी। इस मंदिर दी लंबाई तकरीबन 665 फुट है, इस मंदिर दी चौड़ाई 644 फुट है, इहदी बाहरली द्वार दी उचाई 24 फुट है और मंदिर जमीन तों लैके कलश तक उपर तक 192 फुट उच्चा है। इत्थे एक कलयुग नाम दा पंडित रहिंदा सी, जिदे नाल गुरु नानक देव पातशाह दी गोष्ठी होई। जिहड़ा पढ़दे हो ना कि सतगुरु नूं कलयुग मिलिया, कलयुग ओह नहीं जिहदा नां समां है, ओह युग नहीं, उहनां युगां नूं गुरबाणी महानता भी नहीं दिंदी। इह कलयुग नां दा ब्राह्मण है, पंडित है और जगननाथपुरी दे अंदर ए पुजारी है, मंदिर दे अंदर ओह कलयुग नाम दा ब्राह्मण मिलदा है। इत्थे विष्णु दी बड़ी वड्डी एक तस्वीर, ते तस्वीर बिना किसे सहारे तो इन्हां ने खड़ी कीती सी। लोकां नूं भरम पाउंदे रहे कि विष्णु अपनी करामात दे सहारे आप खड़े ने, पर सी की दीवारां दे नाल चुंबकी शक्ति चार चुफेरे इस लहजे दे नाल फिट कीती सी, ना ओह मूर्ति उपर जा रही है, ना ओह थले आ रही है, ना सज्जे ना खब्बे, इस तरह खलोती सी जिवें हवा दे अंदर खलोती हुंदी, पर चुंबकी ताकत दे नाल। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी ने इत्थे बाणी उचारी। खैर, भाई हिम्मत सिंह 17 सालां दी उम्र दे अंदर आनंदपुर साहिब आउंदे ने।
44 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। 31 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 ਹੀ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

0: थोड़ा जहां मैं संकोच के तां चलिया क्योंकि कल काफी थकावट हो गई, शरीर ही है ना, ते आराम करन दा मौका नहीं मिलिया। इस करके अज इन्नी कु सेवा प्रवान करियो। समूह प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद, गुरु घर दे वजीर बाजवा साहिब उन्हां दा धन्नवाद जिन्हां ने पूर्ण सहयोग दिता।
1: पुछन सिख अरदास कर छे महलां तक दर्श निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी कल युग पीढ़ी सोडिया अब चल नीव उसार खलारी कल युग पीढ़ी सोडिया अब चल नीव उसार खलारी जोग जोग सतगुर

जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने हर संतानो खोर थाओ नाही, हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आपने सतगुरां दी इलाही बचन कीर्तन राही सरवण कीते ने, जिथे आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पावन पवित्र बचना दी विचार रोजाना करदे आ रहे हैं। उथे अज छठम पीर मेरी पीरी दे दाता अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा आगमन पुरब है। ओ सतगुरु जिसने जदो जालम प्यार नाल ना समझे, कुर्बानी देने तो बाद भी ना समझे, ते उसनू कृपान दे मुठे ते हाथ रख के उनू समझाण दा एक तरीका सानू दिता। उस सतगुरु दा अज आगमन पुरब है। आओ गुरु रामदास दे बचन ने ते इस परिवार अंदर गुरता गद्दी गुरु रामदास दे वेले तो ही आई। ताई ता भाई गुरदास ने कहा सी, जान ना देसां सोढ़ियां होर आजार ना जरे अजावे।

चित्त मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर्त ही ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

सतगुरु गुरु नानक साहब का यह श्लोक जेड़ा है आसा दीवार विच सानू मिलदा है। सतगुरु इस श्लोक विच देखो अंदर नू किन्ना धीरे देंदे ने। पुरखां पुरखां दा अर्थ मनुखां आदमी, बिरखां बिरखां दा अर्थ जितनी भी बनास्पति है, तीर्थां जितने भी तीर्थां दे किनारे रहण वाले जीव ने, तटां तटां दा अर्थ कीता है प्रोफेसर साहब सिंह ने नदियां ते दरिया, तटां मेघां मेघां दा अर्थ आ बदल, खेतां खेतां दा अर्थ आपां समझने आ खेत। साहब कहिंदे ने की मनुख की रुख की तीर्थ की दरिया की बदल ते की जिहड़े असीं हरे खेत देखने आ, इस तों बिना दीपां लोवां मंडलां खंडां मरपंडां आ जितने धरती दे टुकड़े ने, आ जितने ब्रह्मांड ने, जितने होर लोक आप

0: दात्या ए निर्गुण ए तेरे गुणा नु नहीं समझदा, ए निर्गुण गुण कशु ना बुझ जाए, बख्श ले हो तो नानक सी जाए। देन वाला ओ रिज वैगुरु वे साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिंतु करया माटी काले देवरा करया, उकत सुरत लै जोत परीख्या मात गर्भ में जिंतु राख्या। साहब ने बाणी विच कहा मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारण हारे। साहब ने बाणी विच कहा माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है, एवड दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच कहा और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पात बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईआं ते अगो कहंदी है देखो जिन्निया मर्जी दलीलां दे लो पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखां तो एक बचन सुनिया है के देन वाला वह गुरु है, कोई किसे नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहें पिता ते खावत एक इस बात अपर बिदतावत।
0: इन्होंने लड़दियां लड़दियां ए आणियां उठ पईआं ते बापू दे कोल घर गईआं ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए विचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारा जनिया ने जाके पिता नु घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जियां गल्लां करदी पई है, असी बैठियां सां अज इकट्ठियां ते गल चल पई के साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्तर देंदा है, ते ए अगो होर तर्क करदी है।
1: जो प्रतपारे देत हमेश लगतं ते जिन कीन विशेष।
0: कहन लगे ए तां गल्लां होर करदी है, आखदी है रिजक देण वाला कोई होर है जिहड़े साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है ते जिदी कृपा नाल तन वड्डा हो रहा है।
1: सुख सो शुभ आहार हम करही किसु बात की चिंतना तरही।
0: कहन लगे असी फिर दलील दित्ती के नहीं साडी प्रतपालना साडा बाप कर दे, सुख नाल असी आहार करनिया वा, सानू किते रोटी दी चिंता नहीं।
1: ए ने माने मत कह न्यारो हम सब कहे कीनस निर्धारो।
0: कह लगी देखो असी सारिया ने इको ही ए आपस विच विचार कीती है के देन वाला साडा पिता है पर एदा ता मत न्यारा है, साडी हां विच हां नहीं मिलांदी।
1: सुनत निरपत पित मूर्ख रोसा नहीं सिर को लख्यो भरोसा।
0: कहिंदे ने कवि जी उको राजा भी मूर्ख है, ओनू ए समझ नहीं जेड़िया ए चार कहंदियां ने ए अनजान ने, जेड़ी एक कहंदी पई ओ सच कहंदी पई। कहन लगे आपस विच मूर्ख बंदा जिनू समझ नहीं एक वैगुरु ते भरोसा नहीं।
1: अपने राजमान में फूला प्रपृत कूल पे ते भूला।
0: किन्ने अपने आ चार गज जमीन ते फुलिया बैठे राज गद्दी ते फुलिया बैठे, एनू एना पता ही नहीं के देन वाला ता एक परमेश्वर है, मेनू भी रिजक ओने दिता है राज भाग भी ओदा दिता होया है।
1: सब कन्या निज निकट हकारी आक्षे समझने इच्छा तारी।
0: उस वक्त इन्हें सारिया बच्चिया नू अपने कोल बुला लिया, ए पुछन वास्ते भी इन्हां दे मन विच है की है, ए आपस विच जेड़िया गल्लां करदियां ने इकलिया आखिर ऐस बच्ची दे मन विच की बैठा है।
1: पृथक पृथक तिन बूझन लागा कहो तू किस को भुगत भागा।
0: कहन लगे एक एक बच्ची नू पुछन लगा के दस तू कपड़े किदे दिते पानी है, रोटी किदी दिती खानी है, तैनू दुनिया दे सुख दा साधन किन्ने दिता है, तेरे तन ते जेड़े कीमती गहने पाए ए किसने तेनू दिते हन।
1: सब ने कहो पिता हम तेरा सावे पर है दर्ब कनेरा।
0: सारिया उच्ची आवाज विच कहन लगियां पिता जी जेड़े तन ते बस्त्र पानिया वा ए भी तेरे ने, जेड़ा आपां हथां विच गहने पाए ए भी तेरे ने, ते जेड़ा असी भोजन छकदियां वा ए भी ता तेरा बख्शिया होया है।
1: ब्रित भारत नित दे दहारा हम सब भुगते भाग तुहारा।
0: सानू देख पिता कोई फिक्र नहीं आराम नल घर सुतियां वा, पर साडे जागण तो पहला भोजन तैयार है, एक दिन नहीं रोज तू सानू भोजन पकवान भेजना है, साडी प्रतपालना तुसी कर दे हो।
1: निज पगनी सब ते पश्चाती राज कोयर बोली इस पाती।
0: कहन लगे जेड़ी ओ बच्ची एक कहंदी सी देन वाला रब है, ओनू पुछया दस खां किदा दिता तू खानी है, तैनू बस्त्र कौन दिंदा है? ते परमेश्वर दे भय विच गुरु की बाणी विच भिजी हुई उस बच्ची ने ए बचन कहे हन।
1: हे पित भाग एक को दुआ भुगत है ए नहीं कब हुआ।
0: लगी हे मेरे बापू एक गल ध्यान नाल सुन लै, कोई किसे दा दिता नहीं उखांदा, एक दे भाग कदी दूजा नहीं उखो सकदा। चेते रखी अपने अपने भाग सारे खांदे ने, तैनू समझ नहीं कदी वेखी के एक दा भाग एक दे मस्तक दे भाग दूजा खा लै। साहब ने बाणी विच कहे कहिंदे ने ता रब दी कृपा है, एक मां दी कुख विचो दो बच्चियां दा जन्म है, एक विचारा दिहाड़ियां करदा पिया ते एक जिहड़ा राज पदवी ते बैठा होए। भाग आपो अपने ने, सतगुरु ने बाणी विच कहा निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। साहब ने बाणी विच कहा आपन लिया जे मिले सब को भागत होए, कर्मा ऊपर निबड़ा जे लोचे सब कोई। बापू अपने अपने भाग खांदा हर कोई, कौन किसे नु भाग देण वाला है।
1: निज निज भाग अदक हर घाट, भोगत जग में रंग सुराट।
0: ये गल वखरी के भाग आपो अपने ने, कोई 36 प्रकार दे भोजन रात नु खा के सौंदा है ते कोई सुका प्रसादा खा के सौ जांदा है। अपने अपने भाग ने, कोई अपने तन ते खद्दर दे बस्त्र पा के सादे बस्त्र पा के जिन दिन कर लैंदा है, ते कोई एक दिन दे अंदर कई कई तरह दे बस्त्र बदलदा है। आपो अपने भाग ने, मेरे साहब ने सारे गल्लां बाणी विच कहियां ने, हजूर बचन करदे ने ना सतगुरु दे बचन आपां पढ़ने आ। कबू खाट सफेदी सवावै, कबू भूम प्यार ना पावै, ये तेरी रजा है मेरे मालक। किसे नू तू बस्त्र कीमती, किसे नू बिल्कुल मैले बस्त्र देना। हे पिता भाग आपो अपने ने, अपने अपने भागां दा खांदे हां।
1: सुन पित क्रोध करियो और भारी, सब के सुनते गिरा उचारी।
0: इन्हने इन्नी गल सुन दी देर सी, मूर्ख बापू नू समझ नहीं पई। उस धी वल अखां लाल करके ने देखिया, क्रोध नाल एदा चेहरा भखन लगा ते इको दम थिड़कदी जबान विच ए कहन लगा है।
1: अमुक रंक हम जात मझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी।
0: ते कहन लगा तेनू कौन रिजक देंदा है? कहन लगी एक परमेश्वर एक वाहगुरु। अपने भाग खानिया फिर गुस्से विच आया कहिंदा चंगा, जे अपने भाग तू खानी है, ए नहीं समझदी के मैं तेनू देना। ते साडी जात दे अंदर एक मनुख है जिदे पुत्र नू कोड़ दा रोग लगा हुआ है, साडी बिरादरी विच रहिंदा है, तेनू समझ पै जाए कि देण वाला कौन है। प्यारियो सिर्फ इको ही आ गल जे जेड़ी बंदे नू रब तो दूर लै जांदी। साहब ने मनमुख दी परिभाषा ही दित्ती है, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। साहब ने बाणी विच कहा दात प्यारी विसरिया दात आरा, दात मिल गई दतार भुल गया। मैं एक खिन विचो निकलन लगा प्रकरण मिलदा, रहीम ने दो दोहरे कहे। एक नवाब सी, उन्हें थाली भर लेनी रुपया नाल सवेरे, सोने दियां मोहरां रखनियां, सारे बंदियां नू देखी जाना जदों भिखारी आने ना, ते अपनियां अखां नीवियां करके ते बुक भर के उहदी झोली विच पैसे पा देने। लोकां लंघी जाना, इन्हे कदी चेहरा तक के भिखारी वल देखिया नहीं, नीवी पाई रखनी। ते एक दिन कोई सज्जन लंघिया ते उन्हें एक गल पुछी, कहिंदा नवाब एक गल तेरी तो मैं खुश हाँ, रब दा भय मनना, लोकां नू दान पुन करना, पर जदों तू किसे दी झोली विच रुपये पाना ते अपनियां अखां क्यों नीवियां कर लैना। उन्हें बड़ी सोहनी गल कही रकीम ने, कहन लगे सीखे कहां नवाब जू, देनी ऐसी देन। हे नवाब कित्थों मैं सीखिया इहो जी गल तू, ज्यो ज्यो कर उच्चा बड़ा। इहदा मतलब ज्यो ज्यो तू हथ भर के किसे नू देन लगना, त्यों त्यों नीचे नैन, त्यों त्यों तेरिया अखां नीवियां क्यों हो जांदियां ने। किसे दी झोली विच पान लगिया तू अखां नीवियां क्यों कर लैना। अगो नवाब ने बड़े कमाल दी गल कही, कहन लगे देन हार कोई होर है, जो बोजित बेजत है दिन रैन, क्यों मैं अखां नीवियां करना वा। कहिंदा देन हार कोई और है, जो बोजित है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें जाते नीचे नैन। मैं इस करके अखां नीवियां करना दुनिया दे लोको, हाथ मेरा जे देन वाला ते कोई होर है। मता सोचियो मैं दाता वा। उस कमले नू समझ नहीं पई, गुस्से विच आ गया, कहिंदा चंगा फिर साड़ी बरादरी विच इक कोड़ी है, मैं देखना तेरे पाक किन्ने कु बलवान हन।
1: हाथ पाव अंगरी चर गई, असको मैं जब तोहे दे दई।
0: कह लगा चंगा फिर तेनू रिजक रब देंदा ना, कह लगी बिलकुल। कहिंदा मैं तेनू उस कोड़ी दे लड़ लांगा जिदे हाथ ते पैर चर गए, देखांगा तेरे भाग किन्ने कु कम करदे हन।
1: अपन भाग तब पुंचन करिए, नरक समान कष्ट को भरिए।
0: कहिंदे अपने भाग तू भोगी, तू कहनी है देण वाला रबे, फिर मैं देखांगा तेरे भाग ते नरक दे समान तू अपनी जिंदगी बतीत करेंगी।
1: सुन कन्या ने पित की बानी, सोई सी सरी मन मानी।
0: बच्ची ने सुन दिया सार कह दिता बापू, जे मेरे भागां विच ओही है ना, मैं ओदे लड़ लगना है, ते तू जिन्ना मर्जी जतल कर ले, मैं जाना ओदी घर। मैनू परवाह नहीं, मैनू उस दाते दे बचना ते भरोसा है। गुरमुख कह के गए ने कि ओ पत्थरां विच, ओ रुखां विच, ओ पहाड़ां विच, ओ पानी विच, ओ दरियावां विच, ओ चारे तरह दियां खाणियां नूं देंदा है, ते जे मैनू लूले दे लड़ लाएगा, पिंगले दे लड़ लाएगा, सच जानी मेरा गुरु नानक ओदी भी चोली विच खैर पाएगा। मैनू परवाह ने, भाग मैं अपने खाने ने, देण वाला ओ परमेश्वर है।
1: इसकी मात सुबर जित रही, तो पिता ने रिस कर कही।
0: किन ने मां रोकती रही है, आखिर मां दा हिरदा पता नहीं बंदा किन्ना कु कठोर हो जांदा है। वाह हंकार, बस तेरे जदों तू किसे अंदर कर कर जाने, किसे अंदर बह जाने, हंकारी बंदा ता इत्थे भी नहीं जानदा मैं अपनी धी दे टुकड़े नू किदे लड़ लाना पिया, अपने दिल दे टुकड़े नू धी नू किदे लड़ लाना। ये हंकार ही है ना कि मैं सब कुछ हां। किन्ने उस बच्ची ने कहा मां रोक ना, याद रखी जे मेरे सिर दा साईं वाहगुरु है ना, जे गुरु नानक दे घर दी कृपा है, ते इस पिंगले नाल भी लग के मैनू गुरु नानक कृपा जरूर करेगा। मैं तां ओदी रजा दा सबक पढ़िया है, मैं ओदे भाणे विच रही हां, ते मां जेड़ी भाणे विच ते भला करके जान लै, ओदे मुंह विचों कदी तर्क नहीं हुंदा। ए तां मालक जिथे रखे मैं ओथे प्रवान करांगी। कहिंदे इस बच्ची ने उस आदमी नूं प्रवान करना, अगले बुधवार विचारांगे। आखिर भाणे नूं मनदी उस धरती ते पहुंचदी है जिस धरती ते कां वी हंस हो जांदे ने। अगला ही हफ्ता मेरा इत्थे दे ए प्रसंग अगले बुधवार पूरा कर देंगे। इनियां को बेनतियां प्रवान करनियां प्यारियो, आप आउंदे हो शाम नूं वध चढ़ के आया करो, सतगुरु दे घर दी हाजरी भरो जी। वाहिगुरु जी।

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवन कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पटां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवन कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, ए बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पैरन नूं बस्त्र देंदा है, खान नूं भोजन देंदा है, तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लै के देंदा है। ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है, पर जदों इहनूं पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पे ए भी उस करतार दी दित्ती दात है ऐवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कह लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि ओ करतार ओ निरंकार तेरे भागां विच जे ओवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर लिया। इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता है, पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलीयत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन, पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता है, पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता है, अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे ने। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नू अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरना अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

जप आदि सच जुगाद सच है ही सच नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा।

खबर उड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे कम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा।

दिन सानू रायत दे दे असी तमाकू पियांगे पर घट कर देंगे। रणजीत सिंह ने एक गल कही कोई जरूरी नहीं तुसी पहला छड के आओ जितन छड के आ जाओगे उदन परची कर ला। कहिंदे ने उस वक्त उन्हें कहा परवाने अज तो बाद तमाकू का सेवन भी नहीं करांगे। उस रणजीत सिंह दे धार्मिक जीवन नू मैं आप नाल सांझा करना चाहना वा। उहदे जीवन दीआं कुछ घटनावां सिखां ने सांभ के रखियां ने। इधर वह सिख राजा बनिया ते जदों 1803 आया ते अमृतसर की धरती रामगढ़िया मिसल ते भंगी मिसल दे अधीन सी। इन्हां ने सोचिया रणजीत सिंह ने कब्जा लाहौर कर लिया है आपां इकट्ठे होके हमला करिए कि रणजीत सिंह नूं आपां एक वारी दबा दईए। यह खबर रणजीत सिंह कोल पहुंची हालांकि वह महाराजा बन चुका है। वह अमृतसर की धरती ते फौज लैके आया ते जदों अमृतसर दे नेड़े पहुंचिया इहदियां अखां भर रही। कहिंदा गुरु रामदास यह किहो जिहा दिन मेरे सामने आउंदा पिया है। तेरी वह धरती जिथे अमृत की शहबर लगती है उत्थे अज एक भरा दूजे भरा ते तोपां दे गोले भराएगा। कोई एहो जी किरपा कर दे कोई सुखैन रस्ता निकल आवे। नाल इन्हें तोपचियां नूं कह दिता जे गोले दागने ने फोके फैर करो केवल दबके मारन दे लई अमृतसर वल नूं करके कोई गोला ना दागे आ जाए। कहिंदे ने उधर भंगियां ने तोपां बीड़ियां ते जदों लड़ाई पूरे जोबण ते होण लगी है ते उस वक्त सिख कौम दा मरजीवड़ा जरनैल आया अकाली फूला सिंह। देखो ओदा अदब ओ पक्षपाती नहीं सी। ओ इको गल चाहुंदा सी कि खालसे राज दे झंडे चुलण। विच आके खलो गया कहन लगा एक दूजे ते गोला चलाण तो पहला जे तुसी मैनू गोले नाल विन दे उते चंगी गल है मैं अपने हुंदिया अमृतसर दी धरती ते सिख सिख ते गोली चलाए ए मेरे तो सहा नहीं जाणा मेनू गोले नाल अड़ा दियो। दोनों धिरां ने कह दिता बाबा जी जो कोई तुसी करोगे सानू परवाह ने। उस वक्त फिर उन्हें एक गल कही रणजीत सिंह अमृतसर दी धरती ते कब्जा तेरा रामगढ़िया ते भंगी मिसल नू कह दिता कि तुहानू जगीर दिती जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा हां मैं जगीर भी दियांगा। उस वक्त रणजीत सिंह अमृतसर विच प्रवेश करदा है हरिमंदर साहब इशनान कीता है ने सरोवर अंदर नमस्कार कीती ते अखां भर रही कहन लगा गुरु रामदास तू उदन ए बचन कह सन जिदन तैनू गद्दी मिली सी के जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केहरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे। दातिया मैं अनपढ़ जिहा बंदा एक छोटी जी मिसल विच उठिया अज जो कुछ झोली विच पाई तेरी किरपा दे नाल मिले बख्शिश करी ए सिदक अखीरले समय तक ने बजाए। शेरे पंजाब अमृतसर दी धरती विच फिर इन्हें एक बाग लवाया उस बाग दा नाम रखिया राम बाग। गुरु रामदास जी दे नां ते शेरे पंजाब दिया धार्मिक झाकियां मैं कुछ आप नाल पेश करनिया ने। जदों इन्हे लाहौर कीता राज कैम एदे बाहूबल नूं कदी तको अबदाली दा पोतरा शाहजमान ओ किले विच बैठा है ते बैठा अपने आदमिया विच कहिंदा सिख मेरे नाल लड़नगे। कहिंदा मेरे ते घोड़े दीआं टापां सुण के सिख पंजाब दी धरती तो छड के पंजाब नूं दूर चले जांदे ने। किसे ने रणजीत सिंह नूं कहा रणजीत सिंह महाराजा बन तो पहला दी घटना है अबदाली दा पोतरा कहिंदा सी सिख मेरे घोड़े दीआं टापां सुण के डरते मारे दौड़ जांदे ने। 30 घोड़ असवार नाल लै अपनी सत सदा कौर नूं इन्हे नाल लिया ते लाहौर दे किले सामने उच्ची आवाज विच गोली चला के गल कही सी अबदाली दे पोतरे मुदतां हो गईयां ने साडी ते तुहाडी टक्कर चलदी पई है। कुप्पर खेड़े दा मैदान सी उदन तेरा दादा सी अबदाली ते मेरा दादा चरत सिंह सामने सी उदन अबदाली नूं मेरे दादे चरत सिंह ने वगारिया तेरे दादे नूं मेरे दादे ने वगारिया आप दाली दे पोतरे अज चरत सिंह दा पोतरा वगारदा है जे बाहां विच दम है ते किले दा दरवाजा खोल के मेरे हाथ देख लै। जदों किन्ने इन्नी गल कही अबदाली दा पोतरा दब गया परत के उन्हें पंजाब दी धरती वल मुंह नहीं कीता। शेरे पंजाब उन्हें सिख राज कायम जदों कीता सिक्का गुरु नानक दे नाम दा
मोर गुरु नानक दे नाम दी। ते जे अज लाहौर ओ अपने लक दुआले पटका बंदा पे है। ते राजा ध्यान सिंह कहिंदा है के महाराज तुसी पटका क्यों बंदे हो, असी नौकर हां, पटका असी अपने लक दुआले बनिए। ते जे विचो सिक्का कढ के कहिंदा ध्यान सिंह ऐ सिक्के ते नाम किदा है, कह लगा गुरु नानक दा। कहिंदा फिर जिदे नाम दा सिक्का चलदा होवे राज ओसे दा हुंदा है, मेरा राज नहीं, राज ते गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दा है। सजना बस मैं ता एदे दर दा चाकर हां, ते चाकर दा काम है ओ अपने लक दुआले कमर कस्सा करके हमेशा तैयार। ओदी भावना नूं कुछ तको कुछ बिरदां दे बयान गुरमुखां ने नोट कीते ने। ओ कहिंदे ने जदों नूं तकने हां सिख राज नूं मैं सिर्फ धार्मिक जीवन वाला पक्ष लै रहा वा, ओ जदों राज गद्दी ते विराजमान है इन्हें एक होका दिता सी कि मेरे राज अंदर कोई ऐसा होवे सिख राज अंदर जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन किते होण, कोई ऐसा होवे। ते किन्ने 126 साल दा एक बजुर्ग मिलिया सी रणजीत सिंह अपने दरबार विच बैठा है। किसे ने आके क्या रणजीत सिंह अज ओ बजुर्ग पिया आउंदा तेरे दरबार विच जिन्हें कलगी वाले दे दीदार किते ने, ते नंगे चरण उठ पिया अगो लैन गया। कहन लगा जदो बजुर्ग नूं तकिया ओदे चरणा ते शीश रख दिता, ते अपने नेत्रां विचो नीर दी झड़ी ला के उस बजुर्ग दे चरण धो दिते, ते ओदियां अखां नूं चुम लिया। कहन लगा बाबा तू किन्ने कु वड्डियां भागां वाला है जिन्हें मेरे सरबंस दानी गुरु दे सामने बह के दीदार किते। जे पुछया तेरा गुजारा किवें वे, ते अगो एक गल के पता लगा के बड़ी मुश्किल नाल उसे वक्त हुक्म कर दिता जिन्हें कलगी वाले दे दीदार किते ने उसे वक्त एदे खानदान दे परिवार दे नाम जगीर ला दिती गई। ओदे जीवन नू कदी पढ़ो अज सिख कुछ पा लिंदा है ते ओ गुरु दरबार नू भी ओ नहीं समझदा। कदी तको खां रणजीत सिंह लाहौर बैठा है ते किसे ने आके एनी गल कही रणजीत सिंह तू कहना खालसा जी दा राज है पर गुरु रामदास दे दर दा कीर्तनी है जेड़ा कीर्तन इना भिज के करदा है के लोग सुनदे ने परकर्मा भरिया हुंदियां ने, पर सजना ओदी रोटी मिट्टी दे बर्तना विच पकदी है, रहिंदा ओ कखां दी कुली विच की करना तेरी ए सल्तनत नूं। उसे वक्त हाथी लिया नाल कुछ कु दौलत लै के तुर पिया है अमृतसर दी धरती ते पहुंचिया। अकाल तख्त दे पिछले पास्यों उस कीर्तनीए दे घर पहुंचिया है, ओदा नाम सी भाई मनसा सिंह। भाई मनसा सिंह ने तकिया दरवाजे बंद कर दिते, खिड़कियां बंद कर दितियां। रणजीत सिंह ने हाथी नूं बिठाया, आवाज दिती भाई साहब जी मैं तुहाडे दर्शन करन आया वां, अपना किवाड़ तां खोलो। ते अंदरों आवाज आई सी रणजीत सिंह मैनू पता है जिस धरती ते तेरे पैर पै जान लोग तां उस धरती नूं खीरियां नाल जड़ जांदे ने। कहन लगा तू मेरे कोल की लैण आया, मेरे पल्ले की है। कहिंदा मैं तेरे मिट्टी दे भांडियां दी थां तैनू सोने दे बर्तन देण आया वां। गुरु रामदास दा कीर्तनी है ते ओ मिट्टी दे बर्तना विच भोजन छके। अंदरों बंद दरवाजे आवाज आई सी रणजीत सिंह ए मिट्टी दे बर्तन नहीं, ए तेरे सिख राज दी रीढ़ दी हड्डी ने। चेते रखी जे सिद्ध खै राज कैमी, जे गुरु दा भै वे सब कुछ कैमे, मैनू मिट्टी दे बर्तन दे दे, जे कुछ देण आया तू राज किदे तो लिया है। कहिंदा गुरु रामदास दे चरणा विचों, फिर कहिंदा एक काम कर दे मेरे गुरु रामदास दे चरणा विच अरदास कर जा जिदे दर तू तू राज लिया है, के गुरु रामदास जिन्नी जिंदगी मनसा सिंह नू दित्ती आ तेरे दर तो बिना किसे दे दर दी चाह ना रखे, मेरी अंतले समय तक निभ जाए। रणजीत सिंह वापस आ गया भरे दरबार विच अखां भरिया ने, ते जदों किसे ने पुछया ते इको गल कही कहिंदा तन सिखी, कहिंदा जिन्हां नू मैं चाहना ओ मैनू नहीं चाहंदे, ते जिन्हां नू मैं नहीं चाहंदा ओ मैनू चाहंदे पए ने। ते नाल कहना कहिंदा इहो जिहा बाबिआं दे सिर ते तां मेरा सिख राज खलोता है। रणजीत सिंह दे सामने एक तस्वीर बनाण वाला आया, मैं अर्ज कीती मैं सिर्फ धार्मिक पक्ष पेश कर रहा, वैसे ओहदा तन ओदी फौज दा प्रबंध ओदा इलाका किन्ना केड़ी केड़ी थां ते उहने केड़े केड़े बंदे नियुक्त
ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੂਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਤ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵਾਂ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਫਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਿੰਡ ਚੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੌਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਜ ਗਜ ਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਹੀ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਚੇਤੇ, ਹਾਥੀ ਚੇਤੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਕਾਹੇ ਕੇ ਤੁਮ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਰੇ ਕਾਹੇ ਕੇ ਤੁਮ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਵੀ ਕੰਠ ਨੇ ਕੀਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਲ ਬਿੰਤੂ ਕਾਮ ਕਿਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ। ਬਸ ਇਸੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਬਾਣੀ ਬੇਅੰਤ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਰ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾੜਾ ਸਾਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੱਕਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਕੁਰਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੂੰਹ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਚਾਨਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ